0: सारे दुनिया ते कम खोल के आंख टोक गंगा यारानिया देख बन कुल यंगा गुलद बोने गेरेन काद या मर काराद गोटो
1: नाग जे देख सारे दुनिया ते

सारे दुनिया से कम कलकियां टोक गंगा यारानिया देगबान कुल यहाँ गागलो डुबोने।

0: कवि आरे दन करता पे
1: एक लाख मालंग आंते का पंबेल गले आंते एक लाख मालंग आज रे बेग मालंग तन ना करो सुन दंगे ना।